0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चेक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कतरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अभी ही जाइबू।

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग्न आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरमहेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरमहे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं। यसले तपाई हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
2: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: 2083 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एल्विस एल्विरा टेरसमा हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा डिजाइन डिजाइनका साडी, सुट, कुर्ती, पलाजा तथा थानका कपड़ाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला।
1: एल्विस एल्विरा टेरस, सिद्धार्थ चोक गालप सुपरमार्केट अगाडि टिकापुर कैलाली, संचालक सुजिता श्रेष्ठ, सम्पर्क नम्बर 9811638887।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो, यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई टाई तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी ही जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, दंडीफोर, दाग, खुंजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा।
5: सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नम्बर 9860071024 ओ 9806477।

0: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका टेक 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै रडगैया झोला उद्योगमा विभिन्न डिजाइनका झोला सुगठ मूल्यमा पाइन्छन्। जस्तै स्कूल ब्याग, क्यारिङ ब्याग, लगेज ब्याग, फाइल ब्याग लगायतका विभिन्न डिजाइनका ब्याग अर्डर गरे अनुसार बनाइन्छ र पुरानो बिग्रेको झोला मरमत गरिन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: रडगैया झोला उद्योग, मुनुवा रोड, टिकापुर, कैलाली। संचालक रामप्रसाद चौधरी।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाढ़, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

बीत के राहत के लाख ईबीआईला देशभर राहत संकलन कई जैती प्रधानमंत्री राहत कोष में 6 अरब से ढेर रकम संकलन आमी 4606 जना संपर्क आज देश के ढेर न ठाव में पानी पर्ना कुछ ठाव में भारी वर्षा के संभावना ओ जानकी गांव पालिका के स्वास्थ्य कार्यालय के वार्षिक समीक्षा सरना से नई सरना रोग ढेर देख गिलक ढेर देख गिलक समस्या आप पूरा खबर रसुआ बहिया में संपर्क विहीन हुईलक पीड़ित के आफंत टीकापुर में भेला होकर आपन नागरिक के अवस्था बारे जानकारी देह मांग करल बाट बेपत्ता हुईलक नागरिक के परिवार सरकार जा जसिन अवस्था में रल से फे जानकारी पाई पर्ना मांग करल बाट टीकापुर के कल्पना व रीता चौधरी के बाबा बहिया से संपर्क विहीन हुईल बाटिन तीन भाई बहिना के रहल कल्पना के दाई फे नहीं हुईन कमैना एक कठो बाबा के खोजी कर दे कल्पना के अनुरोध बा टीकापुर के मीना चौधरी फे कमैना मनई नई हिलक मार हाली खोजी कर दे माग करल बाट वहां उकरे एक हफ्ता से आपन परिवार के सदस्य के परखाई में रहल बतैती सास अथवा लाश ज्या हुईला से फे आपन है पाई पर ना गुनासो करल बाट यशोदा चौधरी अपना दैनिक परिवार के सदस्य के डगर हेरती रहल वो हुईला से फे कहोरे से खोजी के लाख पहल नहीं हुईलक बटैल बाट भतीजा वो भाई संपर्क विहीन हुईलक मालतूराम चौधरी बेपत्ता के खोजी में राजनीति नहीं कहकर ज्या जसिन अवस्था में रल से फे खोजी कही दिए वो यहां से गैलक मनैन के घटना हुईलक ठावसम जाय देह परना मांग करल बाट वहां हुकर स्थानीय सरकार और जनप्रतिनिधि आपन नागरिक के खोजी में सक्रियता नहीं देखायल गुनासो करल बाट वहां हुकर आफंत खोजी केलक आवश्यक रकम समेत नहीं पैलक नहीं मिलक मार पालिका सघाई नहीं सैकल गुनासो करल बाट दिलकुमारी चौधरी फे यहां से खोजी में गैलक मनैन संबंधित ठाव में जाई देह पर्ना वो खोजी में सघाई पर्ना मांग करल बाट कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगरजी बहिया पाछा संपर्क विहीन हुईलक हुकन के खोजी के लाख पहल करती रहल ई क्षेत्र के जनप्रतिनिधि प्रमुख जिला अधिकारी लगायत संग संपर्क हुईती रहल बतैला यहां से रोजगारी के सिलसिला में रसुआ गैलक टीकापुर के 28 जना संपर्क विहीन बाट मंगलवार संपर्क विहीन नागरिक के खोजी के लाख 4 जना रसुआ उहर न्यांगल बाट बहिया प्रभावित के लाख आर्थिक सहयोग जुटना क्रम जारी बा प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के अनुसार आज संध्यासम प्रधानमंत्री राहत कोष में 9 वाणिज्य बैंक के खाता से 6 अरब 36 करोड़ 65 लाख 51 हजार 227 रूपया जमा हुई बा उमध्ये 1 अरब रूपया बाढ़ी प्रभावित क्षेत्र के लाख निकासा के निकासा हुईल सेफे आब कोष 5 अरब 36 करोड़ 65 लाख 51 हजार 227 रूपया मौजूद बा अस्त ही हिमालयन और लक्ष्मी बैंक में 61 लाख 11 हजार 148 अमेरिकी डॉलर जमा हुई बा आर्थिक सहयोग के लाख कठे ढेरनक देश तथा संघ संस्था होकर प्रतिबद्धता समेत जनाइल बाट कार्यालय के प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप कोष हो प्रधानमंत्री कोष मार्फत बाढ़ी प्रभावित के लाख आर्थिक सहयोग जुटेती रहल बा ओ असीन सहयोग ऐनाक्रम बढ़ती रहल जनागिल बा प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय उद्धार अनुरोध पोर्टल संचालन कैकर ई कोष में हालसम स्वदेश तथा विदेश से पैना रकम के विवरण पारदर्शी रूप में सार्वजनिक करती आयल बा टीकापुर नगरपालिका वड़ा नंबर 1 साझेदारी वड़ा संजल से नगद रकम प्रधानमंत्री दैविक प्रकोप उद्धार कोष में जमा करल बा साझेदारी वड़ा संजाल से 1,24,910 प्रधानमंत्री दैविक प्रकोप उद्धार कोष में जमा करल संजाल के अध्यक्ष सृजना शर्मा पंडित बटैल बाट काल बैठल साझेदारी वड़ा संजाल के बैठक में 12 टोल विकास संस्था से रकम संकलन कई जमा कई गिलक हो रसुआ स्थित भोटेकोशी लदिया में भदौ 10 गते बुधवार बिहान ऐलक बहिया में पर्क
मुएन के संख्या 1000

0: 68 जाहीन के सब फेला पदलबा बहिया में पर्क आम्ही 4606 जना संपर्क विहीन रहल नेपाल पधरी जनैलबा। पधरी प्रधान कार्यालय नक्साल के अनुसार आज सम फेला पड़ल सब मध्य 30 ठो बालक 35 बालिका 232 महिला 371 पुरुष और 400 जना आंशिक अंग सहित के रहल बतैलबा। नेपाल पधरी के प्रवक्ता तथा पधरी नायब महानिरीक्षक अभिनारायण काफ्ले के अनुसार उद्धार कैगिल हुकन मध्य के 3453 जाहिन होल्डिंग सेन्टर में धैगिल बा। नुआकोट में 2466, धादिंग में 260, रसुआ में 398 ओ काठमाण्डौ में 229 जना होल्डिंग सेन्टर में बाट। बाढ़ी पाछ उद्धार कैगिल हुकन के 3214 पुरुष 1530 महिला ओ पहचान नै खुलल 14 जना रहल बाट। बहिया पाछ उद्धार कार्य तीव्र बनाइल सेफे आमीन मने सम्पर्क विहीन हुइलक मारक खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहल पधरी जनैलबा। पधरी के अनुसार बहियामा पर्क मुइया तथा फेला पड़ल सबके व्यवस्थापन समेत हुइते रहल बा। हालसम 58 ठो सब सम्बन्धित परिवार तथा आफन्तजन हस्तान्तरण कैगिल बा। प्रवक्ता काफले के अनुसार सबके पहिचान तथा व्यवस्थापन के प्रक्रिया फे सँगसँग आग बढ़ाइल बा। सम्पर्क विहीन के विवरण में 2315 स्वदेशी पुरुष 3068 स्वदेशी महिला 251 विदेशी पुरुष 330 विदेशी महिला और दुईजना फोन से टिपैलक 1340 जना 40 कैक 4606 जना रहल पधरी नायब महानिरीक्षक काफले जानकारी देहलबाट। खोज खबर में जानकी गांवपालिका के स्वास्थ्य कार्यक्रम के वार्षिक समीक्षा लगायत के खबर पलिवा सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: यो खाने मन त कहाँ छ र तर के गर्नु जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फेरि खानै पर्छ।
2: तर एक्लो कहाँ छ श्रेया त्यति माया गर्ने आमा छिन् दिदी छिन् भाइ छ बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ बाँच्नुपर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ।
1: हो र तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो भन्छ
2: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त जब म निस्के काम गर्न थाले अनि पो कमाइ छ त यो कमाइ त मेरो लागि होइन हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो अब घरजम गर्नु छ श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
1: ओहो तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकेछ यार अब म पनि कुलत छोड्छु आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै दुर्गा ज्वेलर्समा 1 नम्बर सुनबाट निर्मित माइली तिलरी छड्के तिलरी रामलीला झुम्का पिजडा झुम्का बाला औठी पेण्डल चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुनचाँदीका गरगहनाहरू बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
5: दुर्गा ज्वेलर्स बलभद्र चोक नमुना इन्टरप्राइजेस नजिकै टिकापुर कैलाली सञ्चालक देव बहादुर सुनार सम्पर्क नम्बर 9868 40 16 60।
0: संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दुपहर 1 बजे बैठिबा। सिंहदरबारमा बैठना बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल भोटेकोशी बाढ़ी हो उहीसे निम्टेल क्षति के सम्बन्धमा विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सम्भावित कार्यसूची बा। बैठकमा सभामुख अर्याल से भोटेकोशी बहिया के कारण हुइलक जनधन के क्षतिप्रति गहिर दुःख प्रकट गरल बाट। अस्तही के आज अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हो पर्यटन समिति हो विधायन व्यवस्थापन समिति के बैठक बैठिबा। आब बिहान 9:30 बैठना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ओ पर्यटन समिति के बैठकमा रसुवा बहिया पहिरो के कारण पर्यटन क्षेत्रमा पदल प्रभाव के बारेमा छलफल गर्न कार्यक्रम बा अस्तहे अपराह्न 12:15 बजे बैठना विधायन व्यवस्थापन समिति के बैठकमा नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 के साबिक के व्यवस्था जगैना सम्बन्धी विधेयक 2083 उपर दफावार छलफल गर्न कार्यसूची बा। आज हिमाली भूभाग के कुश तथा पहाड़ी भूभाग के धेरनक ठाउँमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यम सम्म के वर्षा हिमपात के सम्भावना रहल बा। बागमती गण्डकी लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग के कुछ ठाउँमा ओ मध्य प्रदेश साथ कोशी प्रदेश के तराई भूभाग के थोरसे ठाउँमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यम सम्म के वर्षा के सम्भावना रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनाइल बा। देश के हिमाली भूभाग तथा बागमती गण्डकी और लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के एक दुई ठाउँमा भर भारी वर्षा के पूर्वानुमान कैगिल बा। रात फे देशभर साधारणतया बद्री लगुया बा। हिमाली ओ पहाड़ी भूभाग के कुछ ठाउँमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यम सम्म के वर्षा हिमपात के सम्भावना बा। देश के तराई भूभाग के थोरसे ठाउँमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यम सम्म के वर्षा के सम्भावना बा। कोशी बागमती ओ गण्डकी प्रदेश के हिमाली भूभाग के एक दुई ठाउँमा भारी वर्षा के सम्भावना बा। जानकी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष 2082-83 सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमके समीक्षा हुइल बा। काल हुइलक समीक्षा गोष्ठी सम्बोधन गर्ती जानकी गाउँपालिकाके अध्यक्ष गणेश चौधरी स्वास्थ्य सेवा नैसर्गिक अधिकार हुइलक बतैलबाट जानकीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुइलक बतैती पाछक समयमा पालिकामा नैसर्ना रोगके संख्या बढ़ती रहलकमा र नैसर्ना रोग विपद संज्वारा समेत आवश्यक रहल बतैलबाट उहाँ पालिकामा सबसे धेर शिक्षा और स्वास्थ्यमा खर्च करल बतैती बजेट के समस्या सेफे योजना ओ काम करना शैली महत्वपूर्ण हुइल्फे बतैलबाट उपाध्यक्ष लालमती कठरिया पाचक समय बाल बालिका हुकर जंक फूड ढेर प्रयोग करती रहल यही है न्यूनीकरण के लाग सकुजान लाग पर्ना बतैलबाट उहाँ पोषण सम्बन्धी के कार्यक्रम संचालन हुई बेरफे कुपोषण हो शीघ्र कुपोषण में समस्या देखगिलक बतैलबाट गोष्ठी पालिका से आर्थिक वर्ष 2082-83 में सम्पन्न हुइलक कार्यक्रम उपलब्धि समस्या चुनौती लगायत के बारे में स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जीत बहादुर चौधरी प्रस्तुत कर उहाँ प्रगति प्रस्तुत करती पालिकामा खोप कार्यक्रममा वृद्धि हुइलक नैसर्ना रोग संख्यामा वृद्धि हुइलक जानकारी देती पालिका मानसिक सम्बन्धी समस्या हुइएन हफे सेवा देलक जानकारी देहलबाट उहाँ पालिकाके स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा के दरबन्दी नै हुइलक संघ ओ परदेश आपूर्ति हुइना औषधि जन्य सामग्री नियमित ओ समयमा आपूर्ति नै हुइलक कोल्ड चेन ओ औषधि जन्य सामग्री भण्डारणमा समस्या रहल फे समस्या देखैल पालिका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम फे सञ्चालन करल बा। कार्यक्रममा विद्यालय नर्स मार्फत विद्यालयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हुइलक क्रियाकलापके बारेमा जानकारी शारदा चौधरी ओ मीरा चौधरी जानकारी गराइल अस्तहे नागरिक आरोग्य केन्द्र मार्फत सञ्चालन कैदिना कार्यक्रम बारे मीरा चौधरी जानकारी गराइल गोष्ठीमा याक नेपालके पोषण परियोजना संयोजक रमनराज जोशी फे संस्था से पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत हुइलक गतिविधि सम्बन्धी जानकारी गराइती महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका के क्षमता विकास अगुवा कृषक तालिम किसान कार्ड हजार मार्फत हजार दिन के आमाह पोषण बगैचा निर्माण के लाख रकम सहयोग पोषण लेखाजोखा समेत सहयोग मेडिकल ओ नन मेडिकल सामग्री वितरण संग कृषि बजारीकरण में सहयोग ओ कृषि एम्बुलेन्स खरीद में समेत सहयोग करल जानकारी देहलबाट समीक्षा गोष्ठी में पालिका भीतर के आधारभूत स्वास्थ्य संस्था के प्रमुख जनप्रतिनिधि के सहभागिता रहल रह। कार्यक्रम संचालन स्वास्थ्य शाखा उप संयोजक शोभा चौधरी करल रहल रह। खोज खबरमा आमी खबर पलिबा सुन्ती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
3: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
6: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
3: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
7: बाबु ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
8: उहाँ आफ्नो अनुहार बिगर्के घर से बाहर नै निकर्छु।
7: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
8: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर्के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
9: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
10: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417।
0: खोज खबर में आप बचल खबर। सरकार त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवी सहित 6 विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार नियुक्त करल बा। प्रधानमंत्री तथा विश्वविद्यालय के कुलपति बालेन शाह संबंधित विश्वविद्यालय के उपकुलपति के सिफारिश में शिक्षालय और रजिस्ट्रार नियुक्त करल हुई। जाकर अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय के शिक्षा अध्यक्ष में प्राध्यापक डाक्टर अंजना महर्जन सिंह हो, रजिस्ट्रार में प्राध्यापक रविन्द्र शिवाकोटी नियुक्त हुईलबाट। सेवाकोटी त्रिवी के शिक्षा शास्त्र संकाय के प्राध्यापक रलह, कलसे सिंह विज्ञान संकाय के प्राध्यापक रलह। अस्तय पूर्वांचल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार में प्राध्यापक डाक्टर पन्ना थापा, पोखरा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार में प्राध्यापक डाक्टर निर्मला जमर कटेल और सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार में प्राध्यापक डाक्टर तारादत्त भट्ट नियुक्ति हुईलबाट। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार में सह प्राध्यापक डाक्टर सुदीप ठकुरी तथा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार में डाक्टर जीवन काफले नियुक्त हुईलबाट। नवनियुक्त शिक्षाध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार हुक्र आजुह शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलक शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय जनाइलबा। रसुआ के भोटे कोशी में 10 भदौ में गैलक बहिया के संबंध में राष्ट्रीय सभा में विशेष प्रस्ताव पारित हुईलबा। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल के भोटे कोशी बहिया के संबंध में मंगलवार के बैठक में विशेष प्रस्ताव धरल हुई। वहां प्रस्ताव सभा से पारित करल हो। यह समाचार संग खोज खबर ओराइल। अंतिम में जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक एक फ्यारा फिर से। रसुआ बहिया में टीकापुर के 2 दर्जन से ढेर संपर्क विहीन नागरिक के आफंत से आपन नागरिक की अवस्था बारे जानकारी देह मांग। बहिया पीड़ित के राहत के लाग इवेला देशभर राहत संकलन कई जैती। प्रधानमंत्री राहत कोष में 6 अरब से ढेर रकम संकलन। आज 4606 संपर्क विहीन। आज देश के भयानक ठाव में पानी पर्ना, कुछ ठाव में भारी वर्षा के संभावना। ओ जानकी गांव पालिका के स्वास्थ्य कार्यालय के वार्षिक समीक्षा। सरना से नई सरना रोग ढेर समस्या बनती। जीत आब खोज खबर अत रहे। प्राविधिक संग्रह धन्यवाद देते। आब खोज खबर से मई छपीलाल चौधरी फिर विदा हुई। सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM सुनती रवि। राम राम।

0: छिछी फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो तो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनों कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 और 98 6 56 92 026

0: बुका पिएर कभी पेन्सिल कबू झलै फटाका आजी का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बरती रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई ठो कबू पेन्सिल हेरा कई ठो कबू झोलै फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नाम तो
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओस्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जलम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटी, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
4: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम, टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज।

0: त्यो खाने मन त कहाँ छ र, तर के गर्नु, जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ, फेरि खानै पर्छ।
1: तर एक्लो कहाँ छ श्रेया, त्यति माया गर्ने आमा छिन्, दिदी छिन्, भाइ छ, बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे, कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ, बाँच्नुपर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ।
0: हो र, तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र, त्यसो भन्छ
1: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त, जब म निस्केँ काम गर्न थालेँ अनि पो कमाइ छ त, यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन, हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो, अब घरजम गर्नु छ, श्रीमती छोराछोरी होला उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
0: ओहो, तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस जस्तो यार, अब म पनि कुलत छोड्छु, आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु, भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
2: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो, पाछसे सुरु करल मने घर सिजार सेक्ल।
4: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू, मिलबो मिलबो नि करत, का कैना हो का
3: मिस्तरान बर्जन हुकना घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैल बाट, आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्टफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढो हो न, कबू कहुरो घुम जाए त थाहा पाए।
5: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशिष्ट हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 9848513426।

0: हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै दुर्गा ज्वेलर्समा एक नम्बर सुनबाट निर्मित माइली तिलरी, छड्के तिलरी, रामलीला झुम्का, पिजडा झुम्का, बाला, औठी, पेण्डल, चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुनचाँदीका गरगहनाहरू बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: दुर्गा ज्वेलर्स, बलभद्र चोक नमुना इन्टरप्राइजेस नजिकै टिकापुर फैलाली, सञ्चालक देव बहादुर सुनार, सम्पर्क नम्बर 98 68 40 16 60।
2: चर्पी भर्गिल का करना हो का
3: चर्पी भर्ल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी ट्यांकी सरसफाई में फोन करी आ बा का सरसफाई कई दी है।
2: फोन नंबर कटरा हो तो
3: ली डायल करी 97 6 20 20 300।
2: हेलो, आदित्य सेफ्टी ट्यांकी सरसफाई हो? महिन राजापुर बजार में टैंकी सफाई करना बा।
3: अपनों कंठे टीकापुर, जानकी, जोशीपुर, भजनी, सत्ती, राजापुर, गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे। संचालक शेरबहादुर थारू, संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 ओ 98 6 56 92 0 26।
4: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
5: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
4: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तू, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाँत, खुजली, हुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
7: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98 6 00 71 0 24 ओ 98 0 46 77 4 17।

0: काती रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गतिलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कही था कभी पेंसिल हेरा कही था कभी झोले फटाका था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गोर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक सौ सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: ला फिर यो गाड़ी ले धोखा दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या त्यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भए म त अब
4: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
3: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
0: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको दुई वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपट मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
3: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
5: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
4: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98485518
3: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
4: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
3: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका
4: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
3: अब त म ढुक्क
5: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
4: मोबाइल नम्बर 98481443326 जमरापारी टिकापुर कैलाली

0: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ। लु भन त बाउ, के पाउँछ त्यहाँ?
1: ए त्यहाँ त्यहाँ छ नलका मोटर, ढक तराजु, घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
2: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो? त्यो त मलाई पनि थाहा छ। त्यहाँ त ग्यास, ग्यास चुला, नलका सामान, किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
3: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
0: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ।
4: टिकापुरमा रहेको एक मात्र नापतोल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स।
5: विशेष ढक तराजु, डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एक मात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स।
6: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
4: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा। सम्पर्क फोन नम्बर 98484463 र 98164602204।
7: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
8: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
7: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
8: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
9: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होइती रहल बा। सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर। फोन नम्बर 98600071024 ओ 98046774417।
10: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
11: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
12: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
10: डेलिभरीका लागि
12: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
10: टीकापुर कैलाली।
13: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98017106772।
14: स्वास्थ्यका लागि पानी

0: বাবু, এ বাবু, কাল মনীষ মেডিকাল মে যাইস তো?
1: মই নাই যাই, উহাঁ আপন অনুহার বিগড় কে ঘর সে বাহির নাই নিকরছু।
0: উহে মারে তো তুহিন উহাঁ পাঠাই তো। ইহাঁ হেল ই পত্রিকা মে লিখাল বা মনীষ মেডিকাল মে আব ছালা সম্বন্ধী সমস্যা রহল বিরামী হুকরন বড়িয়া ডাক্তার হই সে উপচার হুই টাই তোর সমস্যা ভেল আস্তে বা জৈবে তো সমাধান হুই যাই।
1: এ হো দাদু, অপন অনুহার বিগড় কে পরিশান রহু, তব তো মই অব্যহি যাইম।
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुस्ता तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
4: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै हार्दिक सुनचाली पसलमा छक्के तिलहरी, माइली तिलहरी, रानी हार, हार, मंगलसूत्र, चाक्की, पेन्डल, बाला, औठी, चन्द्रमा, काटा, नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
5: हार्दिक सुन चाँदी पसल, सरकारी अस्पतालको भित्री रोड, संचालक शंकर साहू, सम्पर्क नम्बर 9848।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजय 5 बजे थारू भाषा खोज खबर में अपनौकन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनौकर अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप से हमारो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुन तिरहलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर अस्पताल में बिरामी के चाप बढ़ना मात्रा में न उपचार कराई बिरामी हुक्र हप्ता दिन पूर्ति रसुआ बाड़ी बारे जनप्रतिनिधि सभा से विशेष प्रस्ताव पारित पूर्व सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाई विज्ञ के सुझाव ओ ऊपर के त्रिशूली एक जल विद्युत आयोजना से 557 जना आमहीन संपर्क विहीन। अब खोज खबर विस्तार में पाछक समय टीकापुर अस्पताल में बिरामीन के चाप बहरती रहलबा। हरेक दिन अस्पताल में 600-700 बिरामीन उपचार कराई थ। सरकार दुई दिन सार्वजनिक विदा दिहल पाछ अस्पताल 5 दिन कल खुलत। बीच में न चाट पर्व व अन्य विदा पर्ल खंड में आमीन कम दिन अस्पताल खुलत। गैला हप्ता 4 दिन कलहक अस्पताल खुलल। 3 दिन के विदा पाछ सोमवार 15 गते अस्पताल में उपचार के लिए 750 जना नाम दर्ता कराई लरल। आकस्मिक सेवा इमरजेन्सी में 3 दिन में 434 जना सेवा विदा व अन्य दिन कैक टीकापुर अस्पताल में एक हप्ता में 1100 बढ़ी सेवा लेलक देख जाएत। अस्पताल में बिरामीन के चाप बढ़ी हुई बेर एकजना बिरामीन सेवा लेक लाख हप्तौ दिन कुरा परत। भजनी नगरपालिका कांडा के रामकुमारी चौधरी यहां छाला संबंधी के समस्या बा। बिरामीन के चाप बढ़ला ढ्यूर हुईला कुंवर से रामकुमारी सोमवार चेक करेला से फिर रिपोर्ट लिहनी पैला। बिहार फिर रिपोर्ट देखाई ऐला तर डाक्टर आयल निरल। वहां एक हप्ता पाछ सोमवार कलक उपचार कराई पैला। जानकी गांवपालिका ओडा नंबर 2 परागीपुर के गणेश चौधरी फिर दात संबंधी के समस्या बा। वहां फिर एक हप्ता पाछ कल डाक्टर रिपोर्ट देखाई पैला। जोशीपुर गांवपालिका 5 बनकट्टा के सीता चौधरी नियमित थायराइड केयर दवाई खैत। वहां बिहान थे लाइन में बैठल। 229 नंबर में नाव रलक सीता बल्ल टल्ल चेक करेल तर उदिन रिपोर्ट लिहने पैला। टीकापुर नगरपालिका झुंगा बहुनिया के किशोर चौधरी फे पत्थरी के समस्या बा। वहां फे बिहान थे से भिडियो एक्सरे के लागि लाइन में बैठल तर पालो नि पैल। टीकापुर के निर्मला केसी पैट बठाकन अस्पताल ऐल। वहां फे चेक करेल तर रिपोर्ट लिहनी सेकल। टीकापुर लम्की चुहा 2 मोतीपुर के सावित्रा देवी थापा के श्रीमान हन सुगर प्रेशर किडनी संबंधी के समस्या के संग हाथ टुटकन समस्या हुई बा। वहां श्रीमान के उपचार के लागि अस्पताल आई लगलग फे हप्तौ दिन हुई लागल तर फे वहां हाथ संबंधी के उपचार कराई नाइल हुई। जोशीपुर गांवपालिका सिमरना के समझना डंगौराहा गर्भवती हुई पाछ रगत बग्ना समस्या हुईल। वहां फिर अस्पताल में चेक करेल तर रिपोर्ट लिह निपाक घर फिर्ता हुईल। आकस्मिक सेवा लेना ठाव में फिर चाप भर्कन समस्या बा। टीकापुर ज्योतिनगर के काफियाना डाईहन अस्पताल में उपचार के लिए लेके ऐल। रात का इमरजेन्सी में ढरल तर वहां फिर ठाव नहीं हो गई किल ईट उधारने पात्र कलक हुई। टीकापुर अस्पताल से 80 का समय में उपचार निपाक

0: अपनह जुटाईही जारकी गाउँपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त भट्टकल वहाँ हुक्र फिर्ता आइलपा छ। लगलग यातायातो खाना खर्च पालिका विपद व्यवस्थापन कोषे तिरही मंगलबार यहाँ से नेङ्लक टोली बुधबार संध्या काठमाडौँ पुगलक बर्गहर रामकृष्ण चौधरी बटुलबाट टीकापुर नगरपालिका एक समिति पुर्से आफन्त ख्वाजा गैलक बर्गहर अखिल थारू पाँच दिन थेसे नुवाकोटके बटारमन बैटी रहलबाट रसुवा जैना डगर निहो बटारमा पुगन हेलीप्याड लग बैठलबाटी अखिल कल हेलिकप्टर आइलपा छकल हेर्ना कोही आफन्तकी उद्धार हुइल कि नै हुइल कि सुन्ना कोठा घुमक जैना काम हुइटी रहलबा दाजु मानबहादुर रसुवामा हेराइलपा छ। अखिलो छिमेकी विक्रम चौधरी उहाँ गैला फुट टीकापुर नगरपालिका एक एकटा नगर से तेजुलाल चौधरी पूर्णबहादुर खड्का सन्तोष चौलागाई धना चौधरी काठमाडौँ पुग नुवाकोट उहर गैलक रसुआमन सम्पर्क विहीन हुइलक आशिष चौधरी के श्रीमती दिलकुमारी चौधरी बटुलबाट टीकापुर नगरपालिकाकै विपद व्यवस्थापन समिति के बुधबार बैठक से आफन्त के खोजीमा जाई चहना हुकन यातायात खर्च बेहोना निर्णय कलबा नगरपालिका आवश्यक पहल करपना बटुटी आफन्त सम्पर्क विहीन हुइलक हुकन के मंगलबार टीकापुर नगरपालिका पुगको अनुरोध कर लरल। टीकापुर नगरपालिका के समितिपुर एकतापुर भूपुकमैया बस्ती मणिकापुर ज्योतिनगर लगायत के क्षेत्र से 34 जना बढ़ी कामदार कर्मचारी सम्पर्क विहीनबाट बाढ़ी प्रभावित के सहयोग 1,00,000 सरकार आह्वान कलक प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष मन सहयोग जुट लागल बा। यहाँ के 12 टोल विकास संस्था मिलकन 1,32,525 रूपियाँ ओमकृष्ण अस्पताल 2,11,111 रूपियाँ टीकापुर खानेपाटी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था 1,51,111 रूपियाँ प्रधानमन्त्री देवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा करल बा। वस्तक विभिन्न संघ संस्था समूह फे राहत संकलनकै कोषमा जम्मा कटिरहलबाट जानकी गाउँपालिका धर्मापुरकी थारू समुदाय व अस्तिमकी लोक चित्रकला बखेरी जानकी गाउँपालिकाकी धर्मापुरमा थारू समुदाय व अस्तिमकी लोक चित्रकला बखेरी कार्यक्रम हुइलबा। बखेरी छलफल कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै जानकी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष गणेश चौधरी समुदायकी चित्रकला बजारीकरण गर्न उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन कलक बटुलबाट उहाँ चित्रकलाकै महत्वबारे जानकारी दिएक लागि कार्यक्रम सञ्चालन कलक जानकारी गराइलबाट उपाध्यक्ष लालमाटी कठरिया हेरैटी गलक संस्कृति चित्रकला संरक्षण करक लागि पालिका कार्यक्रम सञ्चालन कलक बटुलबाट उहाँ संस्कृति संरक्षण कर सेकल सेकल कालिक दिनमा ऐना पुस्ता हस्तान्तरण सेकना बटुलबाट कार्यक्रममा शेखर दहित बालिका चौधरी सोम डेमन डौरा सहजीकरण कलरल कार्यक्रममा महिला सहभागी के उहर्से बर्गर रामकृष्ण चौधरी पुरूष सहभागी के उहर्से दिनेश चौधरी बोलरल कार्यक्रम सञ्चालन नेत्र प्रसाद जैसी कलरल। जलस्रोत मन्त्री इन्जिनियर दीपक गेवाली विकासके नाउँमा हुइलक अभ्यासके कारण विपदके सामना भाग पर्लक बटुलबाट जल तथा मौसमविद समाज नेपालसँगकै सहकार्यमा एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कलेजले मंगलबार आयोजना कलक भोटीकोशी त्रिशुली बाटी 2026 के कारण प्रभाव पूर्व सूचना प्रणाली तथा विपद जोखिम न्यूनीकरणके उपाय सम्बन्धी गोष्ठीमा उहाँ सजिलो केलाक खोलवा के आन्जर पान्जरमा सड़क बनैना कार्य से बजारीकरण के संग शहरीकरण के गतिविधि बहती गैल जाइबेला मानवीय बस्ती बहती गैलको खोलवा के क्षेत्र संकुचित हुइबेर अस्वाभाविक प्राकृतिक जोखिम के समयमा धीर क्षति भाग पलक बटुलबाट उहाँ विपद जोखिम के मूल्यांकन बिना आयोजना के योजना बनाइबेला नेपाल के धीर जल विद्युत आयोजना मन क्षति पुगल बटुटी असीम समस्या के कारण नेपाल के सक्कु बैंकिंग क्षेत्र व बीमा कम्पनी समेत समस्यामा पर्लक बटुलबाट गोष्ठीमा सिभिल इन्जिनियरिङ तथा जल विद्युत पूर्वाधारविद तारानाथ सापकोटा विगत 100 वर्ष के बाढ़ी व प्रकृति जोखिम हन अध्ययन करकन आयोजना डिजाइन करपरट कनामन जोर देलाबाट खोज खबरमा एक घरिक विश्राम पाछा निनीबाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: घर त जेनटेन लगाइयो, अब झ्यालढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
2: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठभन्दा सस्तो, देखिनामा पनि राम्रो अल्मुनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
1: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मुनियमको झ्याल ढोका?
2: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन अल्मुनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
1: अब त म ढुक्क।
3: मिलन अल्मुनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनराज भाट।
2: मोबाइल नम्बर 9848513326। जमरापारी, टिकापुर, कैलाली।
4: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग, मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरो साइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान।
5: यही भदौ 20 गते शनिबारका दिन
6: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग, मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
4: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बडी रिसाउने, झिजो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागू पदार्थ सेवन गर्ने,
6: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनु होला।
5: डाक्टर आउने दिन यही भदौ 20 गते शनिबार।
7: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक, अस्पताल रोड, टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637772।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। गौरा पर्व के आज तेस्रो दिन बिरुडा ढोकन नवालाके गौरा मनाजैती बा। मंगलबार थेसे विधिवत रूपमा शुरू हुल गौरा पर्व के दोस्रो दिन आज बिरुदा बर्तालु महिला बिरुदा ढोकन नवालाके गौरा मनैतीबाट। गौरा पर्व जानकार निर्मला जोशी के अनुसार बिरुदा पञ्चमी के पहिल दिन तामाके भाँडाहान गैय गोबर से लिप्कन डुब्बा अक्षता से सिंगार पटार कर्क वाकर उपर पञ्च अन्न मास कल्लौ गहट गहुँ ओ गुरुस भिजाकन बिरुडा भिजिना चलन रही ऐलक बटुलबाट। दोस्रो दिन उह बिरुडा हान पानीके ढारोमा ढोकन मांगलिक फाक सगुनके सँग बिरुडा धुइना कैजैत। भोटिकोशी लड्यामा इह भदौ 10 गते गैलक बाढ़ीके कारण 216 मेघावट क्षमताके उपरके त्रिशुली एक जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत आमहीन 557 जना कर्मचारी तथा श्रमिक हुक्र सम्पर्क विहीन हुइति रहलबाट। उपरके त्रिशुली एक जलविद्युत आयोजनाके प्रबन्ध कम्पनी नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राली आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्क मुख्य सिभिल संरचना निर्माणके ठेक्का पैलक सहायक ठेकेदार कम्पनी पावर चाइनाके 385 जना सम्पर्क विहीन हुइलक जनैलबा। हाइड्रो मेकानिकल तथा इलेक्ट्रिक मेकानिकल सहायक ठेकेदार इन्ड्रिस हाइड्रो के 94 जना सम्पर्क विहीन रहलबाट। नेपाल वाटर एण्ड इन्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राली के 15 जना, परामर्शदाता कम्पनी जेट कन्सल्ट के 7 जना, मुख्य निर्माण ठेकेदार डुसान के 56 जना आपसमफे सम्पर्क विहीन अवस्थामा रहलक बटुवागिल्बा। कम्पनी के अनुसार सम्पर्क विहीन रहलक मध्ये करिब 115 जना रेड ओक्स क्षेत्र तथा मुख्य सुरुङ भित्र फसलक आशंका गर्गिल्बा। कम्पनी के अनुसार उपरके त्रिशुली एक जलविद्युत आयोजना से 876 जना के उद्धार गर्गिल्बा। यी आयोजना रसुवा जिल्ला के आमा छोडिङ मो गाउँपालिका एक, हाकु क्षेत्र तथा उत्तर गया गाउँपालिका एकमा निर्माणधीन अवस्थामा रहल रह। यी आयोजना 2084 साउन भित्र निर्माण सम्पन्न गर्न लक्ष्य धरल रह। कम्पनी के अनुसार बारी आयोजना के निर्माण सम्पन्न हुई लगलग बाँध लगायत के संरचना व कार्यालय तथा आवास क्षेत्र पूर्ण रूपमा बगाके लैगिल्बा। बाढ़ी ऐना आग पूर्व सूचना जारी करगिला से फे एकदम छुट्टी समय मन भारी तथा लेडो आयोजना स्थलमा प्रवेश गर्न कारण निर्माण स्थल तथा कार्यालयमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारी तथा श्रमिक सुरक्षित स्थानहरू जाई निसेकलक जनागिल बा आयोजनामा ओ ब्याला 1,433 जना जनशक्ति कार्यरत रह उ मध्ये प्रबन्धक कम्पनीकी उहरसे 27 जना परामर्शदाता ट्याक्लो टेबल तथा जेट कन्सल्ट के उहरसे 20 जना मुख्य निर्माण ठेकेदार दुसान के उहरसे 78 जना मुख्य सिभिल सहायक ठेकेदार पावर चाइना के उहरसे 1,069 जना ओ इलेक्ट्रोमेकानिकल सहायक ठेकेदार इन्ड्रिस्ट हाइड्रो के उहरसे 229 जना आयोजना स्थलमा कार्यरत रह यो समाचार के संग खोज खबर रायल अन्तिम जेति खबर के मुख्य शीर्षक फेर्से टीकापुर अस्पतालमा बिरामीन के चाप बढ्ना मात्रामा नै उपचार कराई बिरामीन हप्ता दिन कुर्ती रसुवा बाढ़ी बारे प्रतिनिधि सभा से विशेष प्रस्ताव पारित पूर्व सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाई विज्ञ के सुझाव ओ ऊपर की त्रिशूली एक जल विद्युत आयोजना से 557 जना आमीन संपर्क विहीन लिता आवकला थारू भाषा खोज खबर अत्र 5 बजे नेपाली भाषा मन खोज खबर सुन सकी अब खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद देती मैं गीता फी विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम
2: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जेब पाछा से शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल
8: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहीं ना हो का
2: मिस्तरान बर्दन हो का ना घर हेरो ना पटरा सुगुर बने लबाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफी ओस्ट बनी हो ना वट्र फिर पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कमर घूम जाए ता था पाए
9: यूपीवीसी ब्रांड के मुआ का द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436
5: टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली
10: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: काठी साइकल होस् या गाडी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाक्ने गरौ। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौ र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ।
1: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मै नै जाइम, उहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नै नै गर्छु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाइम।
1: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477417।

हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि